माशाल्लाह जी माशाल्लाह वाह वाह वाह वाह जी सलीम के डेहिल से एकदम टमाटर गाड़ी प्रेक होता ना ओहो हो और ले पे ये लका पमासा ये लका Oscura, Haji, Oscura. Alek Ibrahim se pamaza goreka. Patakadi solar pamat ki wasquare. Nariste Vemdakpal solar pamat ki gore. Walaka pamaza kana yalaka.

0: Sărai mașimi zi, dar tu vii aici pe deșapăr și de tășa e ucăstiti.
1: Janati se tarcă na pe șapăr că hăm eșma washing powder ucăstiti.
0: Eșma washing powder, mărai mi zi mohă curta national o multinational capnaival washing powder vădi vii. Curși aksar gilar tăki ce da sărângi sără părubrei.
1: Bilkul tarcă na, da gile vei har vaxte mutahan curșe kdale. Hoce kalana me curta eșma washing powder vădăl se ricăde di, o stul curvala na pașul di.
0: अच्छा है मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अबरो तो दर तो ये या जे पर इश्मा वॉशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वॉशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी जे कपड़े सा पर युक्त ले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाकर सजूत की वो दिनोर सरफे पर नस्बत इश्मा वॉशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर दा कपड़े सा पर ही पवा लोसीना नखर पवी
0: शाम इस जी के दम रक्षला रिजल्ट ये दाई दर तो ये दाव मोता चेरता मिला बीजी
1: तारे खाना दाव तो दफा बने गलशे अंदरून ला की गेट जान से बे गाले पर शेयर मार्केट से देश में मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफिज जहीर साहब सर उधर ते मिला बीजी।

मैं एडवोकेट खुबाब अली अराई अपने प्रोग्राम कानून सबके लिए में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने और सुनने वाले खैर वाफियत से होंगे। हमारा आज का ये प्रोग्राम रेडियो अमन 88.4 के तवसुत से आप तक पहुंचाया जा रहा है। प्रोग्राम में हमेशा से कानूनी बातों को डिस्कस करने की, कानून को आसान करके आप तक पेश करने की कोशिश की जाती रही है और आइंदा भी इंशाल्लाह इस सिलसिले को हम जारी और सारी रखेंगे। हमारा मकसद टांग अवाम, हमारे सुनने वाले, देखने वाले और तमाम वो लोग जो हमसे किसी भी जरिए से जुड़े हुए हैं उनको एक बेहतरीन कानूनी मालूमात फराहम करना है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले आप हमारा राबता नंबर नोट फरमा लीजिए। आप इस प्रोग्राम के दौरान हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपका अगर किसी किस्म का कोई भी कानूनी मसला है तो हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। हमारा राबता नंबर नोट कीजिए जी, 09635114888 09635111488 09635111488 ये जी हमारा राबता नंबर है। इस नंबर पे इस प्रोग्राम के दौरान आप हमें कॉल कर सकते हैं और अगर आपको किसी किस्म की कोई कानूनी पेचीदगी या मुश्किल दरपेश है तो इंशाअल्लाह ताला ये हम आपका मसला हल कर देंगे।

एक सवाल पूछा गया और उस सवाल को टॉपिक बना के आज मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ। मैं पहले भी गुफ्तगू कर चुका हूँ और दोबारा, चूँकि कुछ बेसिक ऐसे, कुछ बुनियादी ऐसे मसाइल हैं जो कि हर शख्स को दरपेश हैं, हर शख्स उन बुनियादी मसाइल से घिरा हुआ है। अब अगर कानून के तनाजर में हम देखते हैं तो कुछ बुनियादी मसले जैसा कि विरासत के हवाले से, कत्लो गारत के हवाले से, ज़मीन पे कब्ज़े के हवाले से, खुला तलाक के हवाले से, समान जहेज के हवाले से, कारोबार के हवाले से, लेन देन के मामलात, कर्ज वगैरह, ये वो कानूनी पेचीदगियां हैं जिनसे हर एक शख्स दोचार है और हर एक शख्स कहीं ना कहां, कहीं किसी सूरत में इन मसलों में घिरा हुआ है। और ये तमाम तर मसाइल मैं पिछले 3 साल से बारहा इस रेडियो के प्लेटफॉर्म से आप तक पहुंचा चुका हूं। अब इसके अलावा, चूंकि हमारा यहां पे मकसद कानून पढ़ाना नहीं है कि हम आपको कानून पढ़ाएं, हम कानून पढ़ाने नहीं बैठे, हम यहां पे सिर्फ आपको कानूनी मसाइल का आसान हल बताने के लिए बैठे हुए हैं। अब एक दोस्त ने मैसेज किया, कॉल की कि जी वकील साहब, आज के रेडियो प्रोग्राम में फलां जो कानून है उसकी जरा वजाहत कर दें। अब मैंने सोचा कि जी, अब कानून की वजाहत करना, कानून यहां पे बताना, ये हमारे लिए मुमकिन नहीं है। हम आपको आपके मसले का कानूनी हल बताएंगे। कानून सीखने के लिए आपको लॉ कॉलेज में एडमिशन लेके वकालत की डिग्री हासिल करनी पड़ती है और जो आपके मसले का हल है वो हम फिर यहां पे बैठ के आपको बता सकते हैं। हम आपको कानून नहीं पढ़ा सकते, हम आपको आपके मसाइल का कानूनी हल बता सकते हैं। तो इस चीज को मलहूज़े खातिर रखते हुए आप अपने सवालात हमसे कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं कि आपके मसाइल का कानूनी हल कैसे निकलेगा, उस मसले से आप कानूनी तौर पे कैसे खुद को बचाएंगे और जो है किस तरह से कचहरी के जो है मामलात को आप देखेंगे और किस तरह से, कौन सा रास्ता आपने इख्तियार करके अपना मसला हल करना है। तो सवाल

0: इलाज में बहुत कारगर भी हैं, मुफीद साबित हुई हैं। उसमें अजवाइन है, जीरा है, सौंफ है, राल सफेद है, गोंद कीकर है, मलट्ठी है। ये ऐसी चीजें हैं कि जो इसको इसके जख्म को ठीक करती हैं,
1: ठीक है,
0: दर्द को खत्म करती हैं, जलन को खत्म करती हैं, और उसके साथ साथ जो वर्म है, सोज है, उसको भी खत्म करती है। हाँ, इसमें ये एहतियात जरूर है कि अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो फिर आपको कुछ अरसे के लिए जरा मिर्च मसाले यानी सालन वगैरह से थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा।
1: ठीक है,
0: आपको बिल्कुल नरम गिजा की तरफ आना है, जैसे खिचड़ी है, दलिया है, दूध है, आप इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश करें कि कम से कम 15 से 20 दिन आप रोटी वगैरह इस्तेमाल ना करें।
1: ठीक है,
0: उसके बाद यह है कि आप हल्के मिकदार में ले सकते हैं। बाकी अगर आप इलाज करते हैं, डॉक्टर तजवीज करता भी है और आपने इलाज शुरू करा, तो फिर उसको आप दरमियान में ना छोड़ें।
1: अच्छा है, जो भी इलाज
0: देखिए, हाँ कोई भी इलाज है, असूल तो यही है कि आप इलाज को जारी रखें। देखिए, तिब का एक असूल था, उस्ताद हमारे कहा करते थे कि आप कम से कम देसी दवाई भी है तो आप उसे कम से कम 2 हफ्ते या 15 दिन इस्तेमाल करें। अगर वो 15 दिन में भी आपको रिजल्ट नहीं दे रही तो फिर आप अपना मुआलिज तब्दील कर ले।
1: ठीक है,
0: लेकिन अगर आपको 10 दिन में 15 दिन में उसका रिजल्ट आ रहा है, वो स्लो है, लेकिन आप उसको रोके नहीं, उसको जारी रखें, क्योंकि मर्ज आता घोड़े की रफ्तार से ही है।
1: ऐसी बात है,
0: लेकिन जब जाएगा तो वो जू की रफ्तार से जाएगा।
1: अच्छा साहब, इस बात पर मेरा एक सवाल है आपसे कि हमने सुना है
0: जी
1: कि जो देसी तरीका इलाज है
0: जी,
1: ये आराम आराम से काम करता है। ये बात तो चलो अपनी जगह पर है, हर बंदे का अपना एक तरीकेकार होता है, हर बंदे का अपना बॉडी टेम्परेचर होता है, अपने बंदे का मिजाज होता है।
0: सही है।
1: अब एक बंदा है, उसकी बीमारी है 20 साल पुरानी
0: जी,
1: और वो कहता है कि मेरी जो बीमारी है वो 1 हफ्ते की दवाई से खत्म हो जाए, तो ऐसा तो मुमकिन है? आप ये बताइएगा जरा।
0: नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। देखिए, मैंने वही कहा ना कि मर्ज बहुत स्पीड से आते हैं, लेकिन जाते वो बहुत स्लो हैं, और कुछ मर्ज ऐसे हैं कि जो महीनों पे मुहित हो जाते
1: ऐसी
0: हैं।
1: बात है, बिल्कुल।
0: कुछ मर्ज ऐसे हैं कि जो चंद दिनों में भी क्लियर हो जाते हैं,
1: बिल्कुल ऐसी बात।
0: लेकिन थोड़ा सा एक ये जो तिब का है या जो यूनानी या देसी इलाज है, इसमें एक चीज बड़ी अहम है और लाजिम है, और वो है तहम्मुल और बर्दाश्त। आप तहम्मुल रखें, बर्दाश्त करें और उसको टाइम दें।
1: ठीक है,
0: अपने मर्ज पे, अपनी अद्वियात पे, जो मुआलिज आपको बता रहा है उसकी हदायत पे आप फोकस करें, तो इंशाल्लाह बाकी कर्म अल्लाह पाक ने करना होता है। दवाइयों में शिफा अल्लाह ने डालनी है, और जब टाइम आएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द वो मर्ज खुद ब खुद रफा भी हो जाता है।
1: ऐसी बात है, बिल्कुल।
0: लेकिन कोशिश यही करें कि आप अपनी तरफ से मुकम्मल एहतियात रखें, मुकम्मल कोशिश करें कि ये ना करें कि मेरा इलाज बस हो गया है, मैं अब महसूस कर रहा हूं, अब मैंने छोड़ देता हूं इसे। ऐसा ना करें, जब तक आप मुआलिज से मिलेंगे नहीं, वो आपको हिदायतें ना दे, उस टाइम तक आप इसको ना छोड़ें।
1: चलें,
0: इसको मुकम्मल करें। और बाकी रहा कि ये ऐसा मर्ज नहीं है, कुछ लोग डराते हैं कि जी मैदे में इन्फेक्शन हो गया और ये आगे बढ़ेगा और ये कैंसर की तरफ चला जाएगा पेट के, तो उसमें देखें किसी हद तक सदाकत भी है, लेकिन इतना ज्यादा ना डराएं कि वो बेचारा उसे ला इलाज ही समझ ले। ऐसा नहीं है, इसका इलाज कुदरत ने रखा है और जड़ी बूटियों में बेहतरीन इसका इलाज है, जो मैदे की तेजाबियत को भी खत्म करता है, जलन को खत्म करता है, जख्मों को ठीक करता है, तो उससे बेहतर मैं नहीं समझता कि कोई और दवाई होगी जो मरीज को जल्दी से जल्दी रिकवर होने में मदद भी करेगी।
1: हाँ,
0: यह जरूर है कि वो थोड़ा सा टाइम मांगेगी, थोड़ा एहतियात और थोड़ा खुराक का। तो बाकी अगर आप अपने में जैसे कुछ है उसे अगर आप महसूस करते हैं, बास बंदे अपने आप को नोट करते हैं, हसास होते हैं, तो अगर वो देख रहे हैं कि यार बिला वजह मेरा वजन कम हुए जा रहा है, या मुसलसल कभी शदीद कभी हल्का, ऊपर पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द हो रहा है या मुझे बार बार वॉमिटिंग की कैफियत हो रही है और बाद का ऐसा हुआ कि खून भी आ गया उल्टी के रास्ते, तो फिर ये है कि आप फौरी तौर पर मुआलिज से अपनी तशखीस कराएं, क्योंकि हो सकता है कि आपके मैदे में इन्फेक्शन है और आप उसको इतना यानी लाइट ले रहे हैं कि यार ये तजाबियत की वजह से है या इस वजह से, तो ये फिर सही नहीं है। बाकी खाने का जहां तक है, इसमें आप पहली तो बात है कि इसमें आप बिल्कुल लाइट किस्म की खुराक लेते हैं, इसमें सब्जियां वो भी होंगी तो वो घिया वगैरह और बिल्कुल उसमें कह लें कि उसका सूप बना हुआ जैसे,
1: सादा सादा।
0: तो बाकी रोटी जो है वो तकरीबन बंद होती है और फ्रूट भी बंद होते हैं, चाय वगैरह भी तकरीबन बंद रहती है, दूध में आप दूध से चीज खा सकते हैं, उससे यह है कि जल्दी बेहतर रिकवर हो सके, कोई तेजाबियत या कोई मिर्चें या कोई जख्मों को और नुकसान ना हो,
1: ऐसी बात
0: मरीज बेहतरी महसूस करे। बाकी जो है आप ले सकते हैं, उसमें शहद ले सकते हैं थोड़ी मिक्चर में, कलवंजी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और बेशुमार ऐसी हैं कि आप चीजें के उससे आप इस्तेफादा भी कर सकते हैं और घरेलू चीजों से आप इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन बात वही है कि अपने तौर पे फिलहाल इस्तेमाल करना वो ठीक नहीं होता। मुआलिज का मशवरा बहुत जरूरी है, मुआलिज आपको बताएगा कि आप इसमें क्या इसे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं,
1: ठीक है,
0: और उसका आपको रिजल्ट क्या मिलेगा,
1: ऐसी बात है।
0: तो फिर उसमें आप इंशाल्लाह इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, बल्कि इसको दोबारा जो है वो आपकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा और थोड़ी खुराक पे मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा,
1: ऐसी बात है बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी,
0: क्योंकि फिर जाके आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी ये मर्ज इतना शदीद नहीं है,
1: ठीक है,
0: और जहां तक मेरे पास है तो मेरे पास इसके यहाँ पर टांक में काफी मरीज इसके आए हैं एच पी लोरी के, आए वो बेचारे यही है कि मेरे पेट में दर्द है, तजाबियत है और मैं जलन है और ये।
1: अच्छा हकीम साहब, अक्सर बच्चों को ये मसला होता है कि मेरे पेट में दर्द है, तो बच्चों को भी यही
0: नहीं
1: हो सकता है?
0: वो हो भी सकता है, लेकिन बच्चों का मामला थोड़ा सा जरा मुख्तलिफ भी हो सकता है,
1: ठीक है,
0: लेकिन बाज दफा ऐसा भी होता है क्योंकि बच्चे बाजारी चीजें ज्यादा खाते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है कि इन्फेक्शन तो हो सकता है, लेकिन सबसे बेहतर जो इसका हल है वो यही है कि आप मुआलिज से मिलें, उससे मशवरा लें, अगर वो कहता है तो आप एक छोटा सा अपना टेस्ट करवाएं और उसमें फिर ये है कि जब सामने आ जाती है चीज के ये बैक्टीरिया है पॉजिटिव है तो फिर इसका इलाज करें, फिर खाने पीने में थोड़ी एहतियात रखें और जिस तरह मैंने कहा इसमें आप देसी चीजों से ले सकते हैं, बाज लोग घर में भी तैयार कर सकते हैं, उसमें मलट्ठी है, अजवाइन है, जीरा है और सौंफ है,
1: ठीक है,
0: और दूसरा आप राल सफेद है और आंबा हल्दी है, गोंद कीकर है, ये चीजें फार्मूला आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे यह है कि इसमें जलन नहीं होगी, दर्द नहीं होगी, आप इसको बेहतर तौर पे और जल्दी रिकवर कर सकते हैं,
1: ठीक है।
0: तो बाकी मुआलिज से जिस तरह है वो आपको जो हिदायत करता है आपने उसके मुताबिक चलना होता है, तो आप मर्ज को जल्दी रिकवर कर लेते हैं उस पे, बल्कि मर्ज आप पे हावी नहीं होता,
1: ठीक है,
0: आप मर्ज पे हावी हो जाते हैं।
1: हकीम साहब ये बताइएगा कि जो एच पाइलोरी है ये देसी तरीका इलाज से मुकम्मल तौर पर खत्म हो सकता है?
0: बिल्कुल हो जाता है और इसकी कई मिसालें हैं, आप बिल्कुल इसको आप टेस्ट करवाएं और अगर वो पॉजिटिव आता है तो आप उसका देसी तरीके से इलाज करें, सिर्फ आप अपने आप को ज्यादा नहीं 20 से 30 दिन आपने देने हैं, इसके बाद आप किसी भी अच्छी लेबोरेटरी से दोबारा जाकर फिर टेस्ट करवा लें,
1: ठीक है,
0: वो आपको नेगेटिव ही रिपोर्ट देगा। दूसरा यह है कि आदमी या मरीज जो भी है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, लेकिन वो खुद महसूस करेगा कि मेरे पेट में अब वो तनाव नहीं है, वो टाइटनेस नहीं है, वो जलन नहीं है, वो दर्द नहीं है, या मैं कोई भी चीज खाता हूं तो मुझे तकलीफ होती है, वो चीज नहीं है।
1: हाँ
0: ये जरूर है कि बस उसे थोड़ा सा खाने पीने में एहतियात रखनी पड़ती है, परहेज को लाजमी रखना पड़ता है, तो इंशाल्लाह उसका टेस्ट जो है वो रिपोर्ट जो आएगी वो मुस्बत आएगी।
1: हाँ जी, سو بالکل خواتین و حضرات، آپ وابستہ ہیں ریڈیو امن کے ساتھ اور صحت کا پیغام آپ سماعت فرما رہے ہیں.

0: सवाल मार्केट नस्त ट्रैफिक पॉइंट टांक सिटी। बिल्कुल खवातीन हज़रात, इंशाल्लाह आज की तरह कल भी हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब अपनी क्लिनिक पर मौजूद होंगे, यानी कि अलशिफा दवाखाना में। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नज़ ट्रैफिक पॉइंट टांक सिटी। सो बिल्कुल जनाब, टॉपिक का जो आज का मौजू था वो मुकम्मल हो चुका है। सो अगर आपको कोई भी सेहत के हवाले से सवाल है, आप हमारे मौजूद हकीम साहब से बात करना चाहते हैं लाइव कॉल के जरिए, SMS के जरिए, तो नंबर नोट फरमाइए और आप हमें कॉल कर सकते हैं 0319-55-23-404 पर, 0319-55-23-404 पर। इसके अलावा 0963-511-488 पर भी आप कॉल कर सकते हैं, 0963-511-488 पर आप कॉल कर सकते हैं और हकीम सैयद मशकूर अहमद शाह साहब से कोई मशवरा लेना चाहते हैं, कोई टोटका पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप कॉल कर सकते हैं। सो बिल्कुल एक मैसेज है हकीम साहब, कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपको सलाम, हकीम साहब को भी सलाम। मैं लास्ट नाइट मैं कहते हैं कि मैं लेट नाइट सोती हूँ क्योंकि स्टडी कर रही हूँ, फिर सुबह मेरे सर में चक्कर होता आते हैं। उम्र 20 है और हेल्थ भी ठीक है। आई एम सोबिया, सोबिया पूछ रहे हैं। जी हकीम साहब, बहन को बताइएगा जरा।
1: देखें, अब जाहिर बात है स्टडी करती हैं, और दूसरा यह है कि बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जहन पे दबाव भी होता है,
0: ऐसी बात।
1: फिर लेट नाइट जाहिर जिस्म हमारा आराम भी मांगता है, तो अब देखना यह है कि इनको कहीं पट्ठों की कमजोरी वगैरह तो नहीं हो रही
0: है।
1: और बाज़ औक़ात ये होता है कि दिमागी कमजोरी की वजह से, बार दफा नजर की कमजोरी की वजह से ऐसी चीजें सामने आ जाती हैं। ये बहन हमारी इस तरह कर सकते हैं कि ये प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी अगर ये कॉल पे बात करें या मैसेज कर दें, तो उससे यह है कि फिर इनसे तफसील से इस मसले पे बात
0: ऐसी बात है, या बराह रास्त क्लिनिक पर आ जाते हैं,
1: क्लिनिक पे आ जाते हैं, वो तो सबसे अच्छी बात है ना।
0: ऐसी बात है,
1: पेशेंट सामने होता है तो उसकी फिर मुकम्मल जो है वो एक सामने आपके मौजूद है, आप उसकी फेस रीडिंग करते हैं, आप उससे सवाल जवाब करते हैं, उसकी नब्ज देखते हैं, तो तशखीस करने में बहुत आसानी हो जाती है।
0: चलें ठीक है। सब बिल्कुल सही, जिस बहन ने भी मैसेज किया था, तो मेरी बहना बेहतर यही है कि आप हकीम साहब से क्लिनिक पर आके अपने भाई के साथ, अम्मी के साथ आएं, और आपको जो मसला है इंशाल्लाह इसका इलाज बेहतरीन मौजूद है अलशिफा दवाखाना पर। कोशिश करें आप अपनी अम्मी के साथ, अब्बू के साथ, भाई के साथ आएं। अलशिफा दवाखाना शवाल मार्केट नस ट्रैफिक पॉइंट टांग सिटी। अस्सलाम वालेकुम। सो जी, आपकी कॉल भी ड्राप हो चुकी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपकी कॉल्स और SMS हमें मौसूल हो रहे हैं 0319-55-23-404-0963-511-488 पर भी कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन और कहां से बात कर रही हैं? जी मेरी बहन, क्या पूछना चाहेंगी हकीम साहब से आप?
2: जी हकीम साहब से कहती हूँ कि मेरा भाई है 10-12 साल उम्र है उसकी,
0: ठीक है,
2: बहुत कमजोर है।
0: अब बहुत कमजोर है, ठीक है, ये बताएं खाना वगैरह खाता है या नहीं खाता है?
2: हाँ बहुत है, सब कुछ खाता है।
0: चलें ठीक है, मेरी बहन रेडियो आप सुनती रहे, हकीम साहब से मशवरा लेते हैं इसके बारे में, ठीक है, अल्लाह हाफिज। जी हकीम साहब, बहन हताला से पूछ रही हैं, उनका भाई है 12 साल उम्र है और बहुत कमजोर है, कहती हैं कि खाता पीता भी ठीक ठाक है।
1: देखें खाता पीता ठीक ठाक है, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि जो उसके पेट में मेहमान है,
0: हाँ,
1: उसका खाना वो खा जाती हूँ। मेरा मुराद है कि उसके पेट में कीड़े हो सकते हैं,
0: मेहमान है पेट,
1: तो अब जाहिर बात है कि जो वो खाता है उसका खाना वो खा लेते हैं, वो मोटे ताजे हो रहे होंगे और ये बेचारा कमजोर पड़ रहा है।
0: इसलिए
1: यह है कि आप सबसे पहले इसको अगर हो सके तो दवाखाने पे ही अगर आता है,
0: हाँ,
1: तो फिर मैं इसको देख के और इसको पहले इसके पेट के कीड़ों की ही दवाई दी जाती
0: ऐसी बात है,
1: हाँ। और ये भी पता चल जाएगा कि खून की कमी है या कुछ और वजह है जिसकी वजह से
0: मसला पता चल सकता है जब नजरी बदनी मुआयना होता है।
1: अब उसमें यह है कि पेशेंट आ जाए तो बेहतर है, और ये अगर ये चाहें तो ये अपने तौर पे भी अगर उसकी तस्दीक करना चाहें कि यार अगर इसके पेट में कीड़े तो नहीं है,
0: ठीक
1: है, तो ये खुद भी ट्राई कर सकते हैं। हमदर्द की एक दवा आती है किरमार के नाम से,
0: किरमार,
1: کرما

शांगला की पूरन बाजार के डॉक्टर नईम फार्मेसी वाला देते सरदेश में तमाम प्रोडक्ट मिलाई की पूरन बाजार की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो खबर कवे टांग न फरियाल के तेजी खबर का आवाज न राजी। हाँ फरियाल आवाज में सही दर्जी कनस्ताजो पर रेडियो बांधे माशाल्लाह। सुमर टाइम ना सर प्रोग्राम ना हो रही 2023 में प्रोग्राम ना हो रही माशाल्लाह। नो प्रोडक्ट हम से कम 2023 में इस्तेमाल है कना उस दे इस्तेमाल करी माशाल्लाह। कम कम प्रोडक्ट इस्तेमाल है विश्मा की होटेर ज्यादा प्रोडक्ट दी साबुनो अविश्मा बल सर बस दा इस्तेमाल है सर। पैगाम बाबर के वे टूल खुएं दुनों ला ची आया इश्मा दे इस्तेमाल की इस्तेमाल देने की अल्लाह दे खुशहाल का डेर ज्यादा मन रखा। हाँ

जनाब आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त, और जनाब केसन के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसमें ब्यूटी क्रीम्स हैं, फेस वॉश हैं, साबुन हैं। हमारा हेल्थ के हवाले से मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ, क्योंकि हेल्थ के बहुत सारे मसले हैं जिनको लेकर लोग बहुत परेशान होते हैं और फिर उसी के मुताबिक वो ढेर सारे खर्चे कर रहे होते हैं, क्योंकि हर बंदा सेहत का मुतलाशी होता है। तो हमने भी कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं ऐसी बीमारियां जो कि बहुत ज्यादा कॉमन हैं हमारी सोसाइटी में, और उनके इलाज हमने ढूंढे हैं जड़ी बूटियों से, कुदरत के खजानों से हमने कुछ चीजें बनाई हैं। जैसे कि आपको हमने इंट्रोड्यूस करवाया कि हमारे पास जोड़ों के दर्द के लिए, कमर के दर्द के लिए, पट्टों के दर्द के लिए, फालिज लकवा से मुतासरा हिस्से में फिर से जान डालने के लिए, या ऐसे बच्चे जो चल फिर नहीं सकते या जिनको असाबी जो है जिस्मानी कमजोरी है, वो हमारे शिफाए दर्द ऑस्ट्रिच ऑयल यानी कि शुतुरमुर्ग के तेल को इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह उनके पट्टों के अंदर जान आएगी, उनका दर्द खत्म होगा और जड़ से खत्म होगा। 700 रुपए का हमारा ये ऑयल है जनाब, जिसे बोलते हैं केसन शिफाए दर्द, ठीक है जनाब, हासिल कर सकते हैं। कल आपको हमने बताया कि जनाब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है लोगों के अंदर मोटापे का होता है, सो मोटापा जो है बहुत बड़ी मुसीबत है, और मोटापा को खत्म करने के बहुत सारे नुस्खे लोग आजमाते हैं, बहुत सारे कामयाब होते भी हैं, नहीं भी होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये फार्मूला इस वक्त बहुत ज्यादा पॉपुलर है। आज भी सुबह मुझे पहाड़पुर में जो है एक दुकानदार की कॉल आई और वो कह रहा था कि भाई 2 दर्जन 15 दिन वाली फक्की और 1 दर्जन जो है महीने वाली भेज दें, यानी कि एक एक दुकानदार आप 2-2 दर्जन हमसे ये प्रोडक्ट मंगवाता है केसन वेट कम पेट कम, जो कि वजन कम करने वाली फक्की है जो कि पेट की चर्बी पिघलाती है और आपको स्मार्ट बनाती है, ठीक है। इसके हवाले से कल हमने आप लोगों के साथ डीपली बात की है और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ये किस तरीके से काम करती है और इसको खाने का तरीका कार क्या है। फिर मैं बताता चलूं कि ये जो वजन कम करने वाली, चर्बी को पिघलाने वाली हमारी फक्की है, आपने 2 चम्मच रोजाना खाने, 1 चम्मच खाली पेट पानी के साथ और 2 चम्मच रात को खाने के बाद, सबसे पहले तो ये आपका हाजमा ठीक करेगी, आपकी भूख बैलेंस होगी और उसके बाद जनाब आपकी जिस्म से इजाफी चर्बी पिघल कर आपके यूरिन के थ्रू पास होना शुरू हो जाती है। आज एक और जनाब हमारी हेल्थ की प्रोडक्ट है जिसका आपके घर, अगर मुझे आप सुन रहे हैं तो आपके घर के अंदर कोई एक फर्द ऐसा होगा जो इस मर्ज में जरूर मुब्तला होगा, ठीक है, अल्लाह ताला उनको शिफा दे। और ये शिफा का हमारा शिफा की जो प्रोडक्ट है ये मैदे के अमराज के लिए है, मैदे के लोगों के लिए है जिनको मैदे का बहुत ज्यादा मसला रहता है। मैदे के मसले वैसे होते क्या क्या है, जो अमराज होते हैं मैदे के जनाब, उसमें जो सबसे बड़ा मसला होता है जनाब, उसे हम कहते हैं जी बदहजमी, ठीक है जनाब। बदहजमी ये होती है कि आप कोई भी चीज खाते हैं, आपका मैदा प्रॉपर तरीके से उसको हजम नहीं कर पाता है, यानी कि जब आपका मैदा सही तरीके से तेजाबियत नहीं बनाता, ठीक है जनाब, वो सही तरीके से प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता, तो आप जितना भी खाते हैं वो खुराक जो है छोटे छोटे जरात में तकसीम नहीं हो पाती है, वो बहुत देर तक आपके मैदे के अंदर ठहरी रहती है, यानी कि वो जिसके अंदर तेजाबियत होती है वो इनसफिशियंट होती है, जिसकी वजह से आपको बार बार मसला होता है, खुराक खाने के बाद आपके हलक को वापस आती है, ठीक है जनाब। आपने सोबत खाई, आपने चावल खाए, आपने गोश्त खाया, वो बार बार चीजें जो है आपके हलक को, आपके मुंह को वापस आ रही होती है, और ये प्रोसेस जो है तकरीबन 2-3 घंटे तक रहता है ऐसा प्रोसेस। अगर आपको ऐसा मसला है कि आप खाने के बाद जब आप पेट भर के खाना खा लेते हैं और उसके बाद आपको ये वाला मसला रहता है कि जनाब खुराक आपके बार बार मुंह को आती है, इसोफेगस रिफ्लेक्स एक्शन इसको कहा जाता है, कि यानी कि मैदे से चीज वापस आपके मुंह को आ जाती है, और वजह क्या होती है कि आपके मैदे के अंदर जो तेजाबियत है वो इनसफिशियंट है और आपका मैदा जो है वो चीजों को पिघला हजम नहीं कर पा रहा, और 2-2.5 घंटे तक आप इसी सर्कल के अंदर रहते हैं कि चीजें आपके मुंह को आती हैं और बहुत बुरा भी लगता है, साथ वाले भी इरिटेट होते हैं, तो भाई ये बदहजमी है, ठीक है जनाब। इसके लिए आप हमारी ये प्रोडक्ट जो है केसन का हाजमा कंट्रोल सिरप, हमारे सिरप का नाम है सिरप, ये पीने वाला है जिसका नाम है हाजमा
कंट्रोल सिरप, केसन हाजमा कंट्रोल सिरप, इसका नाम याद रखिएगा, ठीक है जनाब। और इसकी कीमत 180 रुपए इसकी कीमत है, आप खरीद सकते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम होते हैं आपके मैदे के मसाइल, जैसे कि ये एक मसला मैंने आपको बताया है कि बदहजमी, मैदे में बोझ होना, ठीक है जनाब। एक और मसला है जनाब, मैदे के सीने के अंदर जलन, ये बहुत ज्यादा लोगों को होता है। ये जो पहला मैंने आपको मसला बताया ना, बदहजमी बोझ, ये भी कुछ लोगों को होता है, लेकिन इस वक्त हमारे सोसाइटी में तकरीबन 70-80% लोगों के अंदर ये जो है जनाब, जिसको हम एसिडिटी कहते हैं, एसिडिटी, ठीक है जनाब, तेजाबियत इसको कहते हैं, कि जनाब जैसे आप खाना खाते हैं आप अपने सीने को मल रहे होते हैं, यानी कि कह रहे हैं ये क्या हो गया, सीने के अंदर जो है आपको फौरी तौर पर जलन होने लगती है, ठीक है जनाब, जलन होती है। तो इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह ये होती है कि जब आपके, यानी कि पहला जो मसला मैंने आपको बताया है बदहजमी का, कि आपके मैदे के अंदर जो तेजाबियत है वो कम है, जिसकी वजह से आपका मैदा हजम नहीं कर पा रहा और आपको साथ ये प्रॉब्लम है। दूसरा मसला ये होता है कि आपके मैदे के अंदर तेजाब ज्यादा है, तेजाबियत ज्यादा है, और जैसे आप खाना खाते हैं और खुराक जैसे आपके मैदे के अंदर जाती है, तो वही तेजाब जो आपके मैदे के अंदर होता है ना, मैदे के अंदर तेजाबियत होती है, ठीक है ना, ये जो आपका हाजमा होता है उसी तेजाब की वजह से होता है जो आपके मैदे के अंदर पाया जाता है, वही तेजाब जो होता है ना आपकी खुराक की नाली को आ जाता है, ठीक है जनाब। अब जो खुराक की नाली का अंदर से स्ट्रक्चर है, जो मैदे के अंदर से स्ट्रक्चर है, वो टोटली मुख्तलिफ है, ठीक है जनाब, जो मैदे का है वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो यही तेजाब जब आपकी खुराक की नाली को ऊपर आती है तो आपको सीने में जलन शुरू हो जाती है। वो सीने में जलन नहीं होती बेसिकली, वो खुराक की नाली के अंदर जो है जलन हो रही होती है, और आप बोलते हैं कि मुझे तो भाई सीने की जलन का मसला हो गया है। तो जनाब इस सूरत हाल में भी आप हमारी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो आपके मैदे के अंदर जो तेजाबियत है उसकी मिकदार जो है बैलेंस हो जाएगी, जनाब। ये बहुत बड़ा मसला होता है। इसके अलावा जो है अक्सर लोगों को कब्ज रहती है बहुत ज्यादा, ठीक है जनाब, कॉन्स्टिपेशन जिसको कहते हैं, कब्ज की वजह से भी मोटापा हो जाता है, ठीक है जनाब, कब्ज कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही आपको मोटापा भी हो जाता है। तो जनाब आप हमारा ये कब्ज की अगर आपको सूरत हाल है, ठीक है जनाब, या फिर आपको खाना खाने के बाद तेजाबियत का मसला है, सीने में जलन का मसला है, या फिर आपको गैस हो जाती है खाना खाने के बाद, तो क्या कर सकते हैं कि आप इस सिरप को अपने पास रखें, यानी खाना खाने के बाद अगर आप दो ढक्कन दो चम्मच इसके लेते हैं या एक चम्मच भी लेते हैं, तो जनाब आपके जो ये मसले हैं, ये गैस, उफारा, इस तरह के मतली, ठीक है जनाब, आंतों की सोजिश या पेट में दर्द वगैरह अगर हो, तो पेट के दर्द के अंदर भी ये बहुत ही जबरदस्त हमारी प्रोडक्ट है, नेचुरल और बिल्कुल जी एडवांस फार्मूला है। इस वक्त जितने भी मैदे के अमराज के सिरप मौजूद हैं जनाब मार्केट में, ये उन सबसे एडवांस फार्मूला है। एडवांस होने के साथ साथ इसके अंदर जो चीजों की मिकदार है, केसन हाजमा कंट्रोल सिरप के अंदर जो चीजों की मिकदार है, जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर डले हुए हैं, वो क्वांटिटी में ज्यादा है। यही वजह है कि हमारे पैक के ऊपर लिखा होता है कि 1-3 चम्मच आप लें काफी होगा, यानी कि बाज सिरप होते हैं ना उसके ऊपर आपको दो दो निशान लगा के देते हैं, भाई दो सुबह, दोपहर, दो शाम का पिए। हमारा जो सिरप है वो इतना पावरफुल है, हाजमा कंट्रोल सिरप, कि इसको आप एक चम्मच भी अगर 24 घंटे में लेंगे ना, तो आपके मैदे का मसला हल रहेगा। यानी कि सिर्फ एक चम्मच या एक ढक्कन पीने की सूरत में, एक चम्मच पिए, ढक्कन ना पिया करें, चम्मच से चीजें इंटेक किया करें तो बेहतर होता है। एक चम्मच अगर आप ले लेंगे तो भाई 24 घंटे में आपका मसला हल रहेगा। अच्छा, आप सोच रहे होंगे क्या ये वक्ती तौर पर असर देगा? नहीं, आपकी बेसिकली मैदे के अंदर जो है ये प्रॉब्लम जब होते हैं तो एक जरासीम होता है जिसको बोलते हैं एच पायलोरी।

जी जनाब, इस वक्त आप मुझे तीन रेडियो स्टेशन से एक साथ सुन रहे हैं। यह है केसन नेचुरल पाकिस्तान का प्रोग्राम डेरा इस्माइल खान में। आप मुझे सुन रहे हैं इस वक्त ग्लोबल FM 91 की लाइव फ्रिक्वेंसी के ऊपर, पहाड़पुर में रेडियो पैगाम 97.4 की फ्रिक्वेंसी के ऊपर, और टांक में रेडियो अमन 88.4। जी जनाब, 88.4 की लाइव फ्रिक्वेंसी के ऊपर। और हमारा नंबर, हमें ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे नंबर 03449363366 के ऊपर, और 03137985457। दो नंबर आप लोगों के लिए हमारे एक्टिव हैं। एक टेलीनॉर का नंबर है 03449363366, और दूसरा हमारा नंबर है जनाब जोंग का 03137984554। आप लोगों के मैसेजेस हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया बक्खर से हमारे साथ मौजूद हैं और हमें मैसेज करके हमारा प्रोग्राम सुन रही हैं। इनके मैसेज को भी प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और टांक में हमारे प्रोडक्ट आपको कहाँ मिलते हैं? टांक के अंदर जो है सदाम प्लाजा है जनाब, सदाम प्लाजा जो ट्रैफिक चौकी है टांक के स्टार्ट के अंदर, वहां पर मौजूद है सदाम प्लाजा। और वहां पर है हाजी जरबत खान का सेटअप जिसे मंसूर जनरल स्टोर कहते हैं जनाब, और वहां पर आप हमारे सारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। ये हाजमा कंट्रोल सिरप, ये शिफाए दर्द, ये जो है वेट कम पेट कम फक्की, ये ग्लूटावाइड क्रीम, ये जाफरानी क्रीम, ये लवली फेस वाश, ये गो पिंपल फेस वाश, ये मिल्की सोप, ये जाफरानी सोप, ये ग्लूटा सोप, सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। और टांक वालों के लिए हमारी स्पेशल ऑफर चल रही है बिस्मिल्ला पैकेज। और बिस्मिल्ला पैकेज यह है कि आप लोग जब बिस्मिल्ला कर रहे हैं केसन के ऊपर, तो हम आपको गिफ्ट दे रहे हैं कि बिस्मिल्ला कीजिए, केसन नेचुरल पाकिस्तान की 1000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदिए, और 1000 की चीजें खरीदने के ऊपर आपको 500 रुपए की दो चीजें हम आपको फ्री दे रहे हैं। और ये ऑफर सिर्फ टांक वालों के लिए, पहाड़पुर और डेरा के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि नया नया हमने शहर ओपन किया है टांक, तो वहाँ के लोगों को हम अपनी ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल करवाना चाहते हैं। तो जनाब आप 1000 रुपए की कोई भी चीजें खरीदेंगे मंसूर जनरल स्टोर सदाम प्लाजा से, तो वहां पर दो चीजें आपको फ्री दी जाएंगी, एक जाफरानी साबुन और दूसरा जो है हमारा परफ्यूम है जो कि पेन परफ्यूम है, जो आप जेब में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, ट्रैवलिंग परफ्यूम है। दो किस्म की हमारी खुशबू है, एक अकबर और एक जारा। अकबर जो है वो मर्दों के लिए है और जो जारा है वो खवातीन के लिए है। तो आप मंसूर जनरल स्टोर से हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं टांक में। इसके अलावा अफसर खान प्लाजा की सारी दुकानों के ऊपर केसन के प्रोडक्ट मौजूद हैं। अलबदर मार्केट पुरानी सब्जी मंडी के साथ वहां पर तमाम दुकानदारों के पास हमारे प्रोडक्ट मौजूद हैं। और इसके अलावा डबरा में भी तमाम दुकानदारों के पास केसन के प्रोडक्ट मौजूद हैं। और इसके अलावा मंसूर जनरल स्टोर जो कि जनाना जनरल स्टोर है, मोहल्ला

0: ठीक है जनाब, साथ में अलफरीद कॉस्मेटिक, इनके पास आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। गुलजार मस्जिद के सामने विकी कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी पॉइंट वाले भाई हैं जनाब, उनके पास केसन के सारे प्रोडक्ट होते हैं। इसके अलावा डेरस मेहान के अंदर ही हाजी गुल जनरल स्टोर बाकरी बाजार, राजा जनरल स्टोर बाकरी बाजार एंड तोपा वाले बाजार के ऊपर जो है इरफान दवाखाना है और फौजी द खोखा जी जनाब, वहां पर भी आपको केसन के सारे प्रोडक्ट मिलेंगे। और इसके अलावा स्टेशन रह गया हमारा जनाब जो है पहाड़पुर का, तो जनाब पहाड़पुर में भी हर जगह आपको हमारी प्रोडक्ट्स मिलती हैं, हर जगह पर मिलेंगी। और पहाड़पुर में अगर आप रंगपुर रोड के ऊपर हैं तो हैदर मेडिकल स्टोर, नियाजी मेडिकल स्टोर और जमील नियाजी, ठीक है जनाब, जमील नियाजी रंगपुर रोड के ऊपर है, उसी के साथ है हसीब जनरल स्टोर, तो आप वहां से भी हमारे प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं। और पहाड़पुर शहर के अंदर जनाब जीशान जनरल स्टोर, नवीद जनरल स्टोर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड साथ में ताज महल एंड साथ में बिस्मिल्ला फहीम भाई के पास, इन सब के पास आपको हमारे प्रोडक्ट मिलते हैं। यानी कि जहां जहां हमारी आवाज मौजूद है, केसन के सारे प्रोडक्ट्स लाखों रुपए की मालियत में आपके इलाके के अंदर मौजूद है। आलिया सुन रही हैं, आलिया कैसी हैं आप? पत्थर में अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? मैं बिल्कुल जी ठीक हूँ, आप सुनाए आप कैसी हैं? कल शो नहीं सुन सकी भाई, आज सुन रही हूँ भाई। मेरे मोबाइल का स्पीकर खराब हो गया है, आवाज का मसला बन रहा है जनाब। मोबाइल को जरूर ठीक कराइएगा, क्योंकि अगर स्पीकर ठीक नहीं होगा तो फिर आप लोगों को अपनी आवाज कैसे सुना पाएंगी, आप हमें अपनी आवाज कैसे सुना पाएंगी। हमारे साथ फर्स्ट कॉलर मौजूद हैं जनाब, इनको मौका दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम, खलील भाई क्या हाल
0: है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शबीर उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं, कैसे हैं मोहतरम
1: जी? अल्लाह की मेहरबानी है सर, प्रोग्राम सुनते थे चार तीन जितने माशाल्लाह प्रोग्राम
0: करो। अच्छा जी, अच्छा मैडी चाहे उत्ते तल थी वेंदी, अच्छा मैडी मेरे को नींद पहुंची फिर तू सब पीती बैठे हो माशाल्लाह।
1: अच्छा तो फिक्स ये ले थोड़ा पहले इस यारा ताने ना मशहूरी होने में पसंद है, चाह गुरक्षी दिए जी तो नाल आखिर तक आ जाऊंगी थोड़ी थोड़ी चाह तो उन प्रोग्राम की तवज्जो।
0: अच्छा जी, यानी कि नूह मजे इकट्ठे गिनते पे आने टाइम में तुसा
1: जी जी, तो एक सिग्नल का मसला थोड़ा से माशाल्लाह जरा हाजमा कंट्रोल थी गया, वेट कम पेट कम थी गया, शुगर दर्द ये लाजमी है सारे
0: स्पेशल असा गाल करने बैठे हाजमा कंट्रोल सिरप दोते कि हर घर की जरूरत है। सही
1: बिल्कुल बिल्कुल, घर घर की जरूरत है, क्योंकि इंसान जरा मैदा है इंजन है, अगर इंजन ठीक न हो तो गड्डी चल नहीं सकती। मसला मेन जरा कमावना ही है, खाना ही है, खाना जरा ना खाना साढ़े मारे बने, ऐसा खाने के मारे न बने, थोड़ी इया एहतियात करो जो एक थोड़े जरा ना खाने जो उका ज्यादा ओवर लोड करेंगे पेट के बीच जी वजह को जरा ना तकलीफ थी है, तो खाना साढ़े मारे अल्लाह पाक ने नियमत बनाइए, लेकिन उस नियमत को ये तो नहीं जो असा इतना खाऊ जो खाना असा खाने के मारे न बन वन इया थी वो साकू खाना भी बन तो असा ओवर न खाऊ जरा सुन्नत नबी सलम का फरमान है जो उतना खा जो चंद निकाले अजन चंगे रांधे जो तू जरा ना उसको उस को रोक दे हाथ को ते हक लाल दखन ते अगर कोई मसला थी भी हुए तो हाजमा कंट्रोल वह सारे सारे निजाम को चाहे असाम खालू चाहे खादी बैठे होंगे इसको कंट्रोल करेंगे और सारी मेदे भी जलन थी वेंगी क्योंकि ज्यादा मिसाल जाती उसको बच नहीं सकते क्योंकि चढ़ गए अगर मिसाला न सकू तेज मिर्च वही नुकसान है, लेकिन चढ़ इस किस्म के गए जो थोड़े नमक घट हो गए या मर्च मिसाल वाले पत्ते असा न घटू तो सोबत करारी थी नहीं तो असा इसे चढ़ गए तो वाती फिक्र न करो, अगर हाजमा कंट्रोल है तो हर शे को खत्म कर देंगे, ये लाजमी है, ये बर्फ कर देंगे सारे मेदे को जख्म को खत्म कर देंगे, जेरी शे खाओ एक दाल न खाओ ते हाजमा कंट्रोल पीओ बिल्कुल बेफिक्र थी के बिल्कुल खाओ जितनी खाओ, लेकिन जरा ना हाजमा कंट्रोल लाजमी हो अच्छा जरा ना सारे बारे बहु अच्छा एक नियमत लिखती है कैसन दी एक वेट कम पेट कम ते शिवाय दर्द भी है ते बाकी जो है ना जितने भी चाहे सो पीन तो वो बहु अच्छे सफाया जरा खासकर सफाया दर्द हाजमा कंट्रोल तो वेट कम पेट कम ये असलू जरूरियात बन चुकी है, इन्हें त्रे छाया सारे मारे जरा

0: जी जनाब, मैंने जब नाम उठाया नामी गिरामी, तो यकीन कीजिए मेरे सामने तीन नामी गिरामी नाम आ गए, एक राजा गफूर, एक नौमी मजबूर और एक अरूबा वफा फातिमा। यानी कि ये तीनों के तीनों जो है मेरे लिए नामी गिरामी नाम है, और इसी लम्हे में तीनों बंदे मेरे सामने फ्लैश हुए हैं। तो इन तीनों बंदों में से एक बंदे को मौका दे रहे हैं जनाब। राजा गफूर, ओवर टू यू, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम जनाब, जनाब खरीयत
0: सही की में आले, ठीक ठाक है। मैं तुम्हारे को आज बहुत नाराज बैठा, पता होवे तो को
1: क्यों नाराज हो
0: गया वे? दुश्मन नाराज हो ना, सता के दुश्मन मोटे न होवे, तू साथे दुश्मन नाराज ही न होवे।
1: मोटे बंदे न होवे, मोटे तो दिखे ढाए पोने
0: में ढाए पोने ना, अगर वो
1: मोटे भाग ही नहीं सकते
0: करो सही मुंह सारे मोटे लोग सुन दे, मैं साकू ना स्मार्ट करा दे।
1: लड़ाई की वजह तो भाज भी नहीं सकते, मल भी नहीं सकते।
0: अच्छा बात, तो क्या करे सी अगर भाज नहीं सकता तो बात?
1: सर जी थोड़ी आवाज मजा नहीं थी मेरे मोबाइल।
0: अच्छा तो मजा नहीं करे मैं आके, अगर भाज नहीं सकती तो बात क्या करे सी?
1: मत कॉल करे ना, मत कॉल करे।
0: अच्छा चलो बुला के कॉल करो जी। जनाब राजा गफूर सारे नाल मौजूद हैं जनाब, और इनसे मैं नाराज हूँ। क्यों नाराज हूँ जनाब? अच्छा जी, ये एक दफा फिर से आवाज आ रही है राजा गफूर एंड राजा गफूर जनाब, आवाज आ रही है आपको? हेलो सुन की नो सही आय है, चाय का अपना मजा यार कसम से। हेलो
1: हेलो
0: जी जी, आवाज आनी पे सही?
1: आवाज कट करता आती
0: है। अच्छा बला तू सा कटो सही, हुन बस बहुत ही गई है जी, हुन बहुत ही गई। अच्छा जी, आप आ रहे हैं हमें, और हमारे साथ अरूबा वफा फातिमा मौजूद है, कहती हैं द यूजर ऑफ ऑन द केसन फोड़ा। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम उस्ताद जी, माशाल्लाह शो इज वेरी नाइस। चलो जी, और फिर उसके बाद एक और काबिल एहतराम नाम हमारी सुहाना आप ही आ चुकी है जनाब, इनको मौका दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम।
0: आज पूरे डेरे में सिग्नल कमजोर है भाई, जो जिधर से कॉल आवाज सही है।
2: घर में बड़ी रौनक
0: है। क्या चीज?
2: घर में बड़ी रौनक लगी हुई है।
0: क्यों, एफएम चल रहा है?
2: मैंने कहा कि ऐसा घर में बहुत रौनक लगी हुई है।
0: हाँ रौनक, मैंने कहा शायद आप कह रही हैं कि हमारे घर में रौनक लगी हुई है, क्योंकि जब एफएम स्पीकर के ऊपर चल रहा हो तो फिर रौनक तो लगी होती है ना घर में भी।
2: घर में किस्म की रौनक है, मैं अकेली बैठ कर
0: रौनक सारी। अकेली अकेली बैठ कर भी आप रौनक फील कर रही है?
2: बहुत, ऐसे जैसे महफिल हो।
0: महफिल लगी
2: हुई, महफिल सजी।
0: अच्छा महफिल सजी, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज तो अम्मा, आज तो अम्मी बेटा इकट्ठे आ गए, उधर से नौमी मजबूर आ गए, यहाँ से सुहाना आप ही आ गई।
2: देखे फिर
0: माँ बेटा दोनों इकट्ठे आ गए किशन किशन घर के अंदर है जी।
2: किशन घर के स्पेशल है ना, और नाक में भी दम करते हैं।
0: नाक में भी दम करते हैं। चाय पिए आज आपने या अभी तक चाय नहीं बनाई आपने?
2: बस अभी उठी तो किशन जैसे लगाया तो फिर अभी चाय बनाऊंगी।
0: अच्छा जी, यानी
2: कि मजा आता है, चाय ठंडी हो जाती है।
0: अच्छा क्या चाय ठंडी हो जाती है? शो के बाद सुनेंगी तो आराम से गरम गरम मेरी अपनी चाय, यकीन करें मेरी अपनी चाय भी ठंडी हो जाती है यहाँ पर पड़ी पड़ी।
2: शो नहीं, शो का टाइम भी है, ऊपर से चाय भी साथ पीते, इतना मजा आता है।
0: अच्छा मजा आता है, तो हमने आप लोगों के लिए मजा टाइम ढूंढा हुआ है मतलब है।
2: वो जबरदस्त, और अक्सर मुझसे चूक जाता है टाइम।
0: चूक जाता है, आप नींद में सोई होती है तो फिर चूकेगा तो सही ना। अच्छा सोना, आप एक बात बोलिए, ये प्रोडक्ट हम जो आज जिक्र कर रहे हैं भी, हाजमे को ठीक करने वाला सिरप, ये आपने इस्तेमाल किया हुआ है हमारा?
2: ये आपने मुझे दिया था ना, बहुत जबरदस्त रिजल्ट
0: है। कैसा? ये भी सही हकीमों वाली चीज हमने बनाई है
2: जी। आप तो आधे हकीम हो ना।
0: सही हकीमों वाली चीज, डॉक्टर वाली चीज बनाई।
2: पेट कम और वेट किया है, मेरा पेट कम हो गया है।
0: पेट कम आपका हो गया? अच्छा आप डायबिटिक भी हैं, शुगर की पेशेंट हैं, तो इस वक्त बहुत सारे लोग शुगर के मरीज भी सुन रहे होंगे ना, तो आपने जब हमारी वेट कम पेट कम फक्की खाई थी तो क्या इफेक्ट आपको आया था?
2: बस उससे वजन कम हुआ, शुगर कम नहीं हुई थी, शुगर मेरी चढ़ गई थी क्योंकि छोड़ दी थी। तो
0: आपने मेडिसिन छोड़ दी होगी ना फिर साथ में? जी सुहाना आप ही की। हेलो जी, आवाज इनकी कट रही बहुत ज्यादा हमारे पास। और ये हम ये नहीं कहते कि आप शुगर के दौरान जो है, शुगर के बंदे का भी वेट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है जनाब, शुगर के बंदे का भी वेट बहुत ज्यादा होता है, तो ये उसको कम करने के लिए मोमिन है। और आप मेडिसिन ना छोड़े, हम ये कहते हैं कि जब आप वेट कम पेट कम फक्की को खाएंगे तो आपकी जो मेडिसिन है ना वो कम हो जाएगी। इसका इफेक्ट इतना इंसुलिन बनाने में कि आपकी मेडिसिन की जो मिकदार है ना वो कम हो जाएगी। सुहाना पे आवाज आ रही है आपको? हेलो, अच्छा जी, सिग्नल का मसला है।
2: आवाज आ रही है? मेरी नहीं आ रही।
0: हाँ अभी आ रही है। मैंने कहा तो वजन आपका कम हुआ, और आपने एक बात बोली थी जो मुझे अभी तक याद है कि मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई थी शुगर की वजह से, बड़ी थकावट होती थी मुझे।
2: जी जी, जब सुबह बंदा उठता है ना तो नॉर्मल बंदा तो एक्टिव उठता है, और मैं ऐसे सुस्त हो रही, जैसे 10 बंदों ने मिलकर ना मुझे ऐसे डंडों से मार दियो। अच्छा। जब जी मैं यूज कर रही थी तो मैं बिल्कुल एक्टिव हो गई थी, घर के सारे काम वगैरह।
0: क्योंकि आपने ये फक्की इस्तेमाल करने के बाद आपने फीडबैक हमें फेसबुक के ऊपर दिया था कि क्या मैजिकल चीज दी है कि मैं तो एक्टिव हो गई हूँ, मैं तो अब काम कर रही हूँ। यानी कि ये फक्की शुगर के मरीज की सुस्ती खत्म कर देती है? बिल्कुल
2: बिल्कुल, नेस्ट भी खत्म कर देती है।
0: क्या चीज?
2: सुस्ती नेस्ती हर चीज खत्म कर देती है।
0: नेस्ती हर चीज खत्म कर देती है, आपको एक्टिव भी कर देती है, और मोटापे को और एक्स्ट्रा चर्बी को भी पिघला देती है।
2: खासकर काम चोर गधे जो होंगे ना वो ठीक हो जाएंगे।
0: अच्छा, यानी कि काम जो नहीं करते वो हमारी वेट कम पेट कम खाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, ऐसे ही है?
2: जी बिल्कुल।
0: चलो ठीक है।
2: और पेट घटता घटता सारा
0: पेट, वाकई आप कहती हैं कि ये प्रोडक्ट जो है पेट को घटा देती है, चर्बी पिघला देती है जी।
2: जो भी मुझे देखते हैं ना वो कहते हैं इतनी कमजोर हो गई हो, इतनी कमजोर हो गई हो। मैंने कहा दिल में कहती हूँ राज की बात है, राज की बात है।
0: राज की बात है, दूसरों को नहीं बतानी, खुद ही सेहतमंद होते हैं, खुद ही प्यारे होते
2: हैं। जो बेहतर समझते हैं उसे बता दे, जो नहीं समझते उसे नहीं बता दे।
0: चलो ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू, आप हमारे साथ मौजूद थी जनाब। और एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है और इनको हम मौका दे रहे हैं इस वक्त जी। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
0: जी जनाब,
3: कौन?
0: मैं बिल्कुल जी ठीक ठाक हूँ। मास्टर साहब आ चुके हैं हमारे साथ।
3: जी जी जी,
0: कैसे कैसे हैं मोहतरम? ठीक हैं आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह।
0: आज आपको हमने एक और फिर सेहत के हवाले से एक प्रोडक्ट बता दिया है कि भाई हम तो केसन तो आप लोगों का इतना सोचती है कि आपके जितने भी बड़े बड़े मसले हैं ना बीमारियों के, उनके हल है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह शिफा वाले प्रोडक्ट हैं हमारे पास।
3: जी कौन सी?
0: ये हाजमा कंट्रोल सिरप जो हमने आपको बताया, जो हाजमे को सेट करने वाला सिरप है।
3: अच्छा, आज तो दो पत्ती वेट कम वेट मैंने ले है, एक दर्द।
0: अच्छा जी, मंसूर मंसूर से आपने लिया?
3: जी जी हाँ जी, नहीं वो
0: हाँ हाँ ठीक है ठीक है
3: जी, से ले हैं दो पत्ती और एक दर्द।
0: तो फिर आपको गिफ्ट मिला है साथ में?
3: नहीं, तो पहले गिफ्ट मिलेगा ना ये दो?
0: नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं ये आज आपने कितने सौ की चीजें ली? आज आपने कितने का बिल बना आपका?
3: आज इसमें तकरीबन 350 की देगी एक,
0: ठीक है,
3: और दूसरा शिकायत दर्ज 350
0: तो 1000 तो आपका हो गया ना?
3: 1050।
0: तो फिर उसके ऊपर तो गिफ्ट आपका बनता था, एक परफ्यूम और एक साबन बनता था, उसने आपने उनसे क्यों नहीं लिया? ये हमने 1000 रुपए के ऊपर गिफ्ट रखा हुआ है ना, 1000 रुपए की चीजें खरीदेंगे तो दो गिफ्ट मिलेंगे आपको वहाँ से, तो आप वहाँ पर जाएं और उनसे लें कि भाई मैंने जो 1000 की चीजें आपसे ली हैं, हमने
3: अच्छा तो पैसे तो पहले 1000 मैंने कल दिए थे,
0: ठीक है,
3: एक शादी को शादी उसके पास दिया था 1000 रुपए की, पहले एक पत्ती और एक शिकायत दर्द। आज तो मेरी बहन ने कहा कि मेरे लिए पत्ती ले आए,
0: ठीक है,
3: तो मैंने दो पत्ती और एक शिकायत दर्द 1000 तो कल दिए थे और एक 350 रुपए आज दिए हैं उनसे,
0: ठीक है,
3: दूसरी पत्ती के।
0: जी, तो ये तो फिर उसने
3: तो आपके 1350
0: तो आप उस भाई को भेजिए वहाँ पर, आपके दो गिफ्ट, एक परफ्यूम आपको मिलेगा, ठीक है, और एक साबुन फ्री मिलेगा 1000 के ऊपर। ये टांग वालों के लिए हमने ऑफर रखी हुई है कि 1000 की चीजें खरीदेंगे तो दो फ्री मिलेंगी आपको।
3: क्या देंगे जी?
0: मैंने कहा 1000 रुपए के ऊपर दो चीजें फ्री हैं, एक परफ्यूम और एक साबुन।
3: चलो ठीक है, फिर वो मेरे दोस्त है वो जो
0: बस ठीक है, हाँ जरूर, बस उनसे आप ये आपके लिए हमने ऑफर बनाई हुई है तो जरूर जरूर, और इस्तेमाल शुरू कर दिया माशाल्लाह आपने ना?
3: अभी तक मुझे मिला नहीं, अभी उसे फोन किया था, आज मैं घर में हूँ, वो दो तीन बजे आया है काम से, उसका दर्द मेरे पूछी थी मेरे दोस्त का सारे का बोले नहीं सर इसका तरीका पक्की का किस तरह इस्तेमाल करेंगे जी?
0: पक्की को पानी के साथ इस्तेमाल करना है, एक चम्मच सुबह खाली पेट, खाली पेट नाश्ते से पहले,
3: अच्छा
0: नाश्ते से बिल्कुल पहले खाली पेट, जैसे कि सुबह की नमाज पढ़े ना फजर की नमाज, तो उसके बाद ले लें, उसके बाद आप पानी के साथ एक चम्मच ले लें आप, ठीक है। और दूसरी जो है ना, आपको रात को खाने के आधे घंटे बाद, जैसे रात का खाना खा लें तो उसके बाद जो आधे घंटे के बाद एक चम्मच और ले लें, दोनों पानी के साथ,
3: ईशा की नमाज के बाद,
0: ईशा की नमाज यूँ समझ ले, एक फजर की नमाज के बाद और एक ईशा की नमाज के बाद, ये पानी के साथ आपने लेना है, ठीक है जनाब?
3: ठीक है
0: जी, ओके जी, बहुत शुक्रिया आपका जनाब, थैंक यू सो वेरी मच जी मास्टर।

जी जनाब, अब मुझे इस वक्त तीनों स्टेशन से एक साथ सुन रहे हैं, पाठपुर में भी मौजूद, नौमी मजबूर हमारे साथ मौजूद हैं, और नौमी मजबूर क्या कह रहे हैं, सलाम कह रहे हैं जनाब, और तला किंग भी मौजूद हैं क्या जी, सलाम कह रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, और बहुत मजा आ रहा है, ठीक है जनाब, और बहुत नौमी मजबूर कहते हैं कि बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है जी, और पुरानी यादें ताजा हो रही हैं। कौन सी यादें यार जी।

जी जनाब, केसन की वेट कम पेट कम हर्बल फक्की जनाब आपको स्मार्ट बना सकती है। और हम मैसेज पढ़ रहे थे किसका, बल्कि मैं इस वक्त थोड़ा सा फ्लाइट मोड लगा लेता हूँ, मैं इनके मैसेजेस जल्दी से पढ़ लूँ, टाइम हमारे पास कम होता है जनाब। और दुरे अदन, मेरा दिल करता है मैं एक परफ्यूम बनाऊं जिसका नाम हो दुरे अदन। ठीक है जनाब, हमारे ऑलरेडी दो परफ्यूम मौजूद हैं, अकबर एंड जहरा, दो परफ्यूम मौजूद हैं। जहरा के नाम से एक परफ्यूम हमारा मौजूद है, नाम की तरह खुशबू बहुत प्यारी है खवातीन के लिए स्पेशली। ठीक है जनाब, छोटा परफ्यूम इसका 250 रुपए का है, बड़ा 1600 रुपए का है। ठीक है जनाब, उसके साथ अकबर है, अकबर भी छोटा 250 रुपए का है, बड़ा 1600 रुपए का है। एक और अब हम परफ्यूम लॉन्च करने जा रहे हैं जनाब, रुखे जानान। ठीक है जनाब, और वो हम देखते हैं कि वो बड़ा लॉन्च करते हैं या छोटा। और दुरे अदन मेरा दिल बहुत करता है, ये नाम मुझे बहुत प्यारा है, जन्नत के दरवाजे का नाम। तो हो सकता है दुरे अदन भी हमारा परफ्यूम आ जाए। ठीक है ना, जिस फील्ड में हम कदम रखते हैं फिर उसको डे बाय डे बढ़ाते रहते हैं। तो अरूबा वफा फातिमा यानी कि दुरे अदन कहती है, द यूजर ऑफ ओनली केसन प्रोडक्ट। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम उस्ताद जी, माशाल्लाह शो इज वेरी बेस्ट एंड प्लीज उस्ताद जी अपनी जगह किसी को मत दिया करें, हजारों आवाजें भी सुनाई दे ना, आपकी आवाज की और अल्फाज की मिठास किसी के अंदाज बयान में नहीं हो सकती। यू नो आई लव फॉर योर वॉइस। ठीक है जनाब, कहते हैं कि मैं आपकी तर्जमा यही है कि मैं आपकी आवाज से बहुत प्यार करती हूँ। तो वो हमने आरजे को निसार भाई बहुत काबिल एहतराम है, और पश्तो लैंग्वेज की वजह से जो है, क्योंकि ये प्रोग्राम यहाँ से टांग को जा रहा होता है तो पश्तो जरूरी है। अच्छा जी, अब्दुल हादी हमारे साथ हैं, अस्सलाम वालेकुम। तेरी जात अजीम है रब सोना, तेरा जिक्र करेंदा खुश थी ना, तेरी जात तारीफ दे काबिल है, तेरी हमद लिखे ना खुश थी ना, तेरे हुक्म ते जिन जान कुर्बान करा, मदनी ते दरूद भेजे ना खुश थी ना, उन्हीं शाकिर बनी हुई हर शय ते सुभान अल्लाह आखदा ते खुश थी ना। मकसद बस क्या बात है जा, बहुत जबरदस्त। सिरम शहजादी पहाड़पुर से हमें सुन रहे हैं भाई, मैं शैम्पू, अच्छा जी आयल और ग्लूटावाइट क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। भाई हमें कैसे पता चलेगा कि जो केसन के ओरिजिनल प्रोडक्ट हैं, प्लीज बता दें। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह पहाड़पुर के अंदर हमारी गहरी नजर है हर दुकान के ऊपर, और गहरी नजर है हमारी के हर चीज को हम चेक कर रहे होते हैं भाई कि कहीं पर कोई दो नंबर चीज ना है। तो इंशाल्लाह हमारी टीम की भरपूर कोशिश होती है कि हम चेक एंड बैलेंस रखें, और कोई भी दो नंबर ही अगर कहीं पकड़ी जाती है तो उसे रिमूव करा दें एरिया से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप बेफिक्र होकर जहां से भी आपको प्रोडक्ट मिलेंगे केसन के, वो ओरिजिनल प्रोडक्ट ही होंगे इंशाल्लाह। सलाम भाई, कैसे हो भाई, आपकी आवाज मुझे आपकी आवाज अच्छा जी आवाज बड़ी प्यारी, मुझे आपकी आवाज बड़ी अच्छी लगती है। वैसे आपके शो भी मस्त है, मैंने आपकी क्रीम लगाई थी। लगाएं तो फिर इस्तेमाल करती है ना, इंशाल्लाह आपको डिजायर रिजल्ट भी मिल जाएंगे। सब सुनने वालों को मेरा सलाम। एंड ये है रोनी खानू खेल से, रोनी हमें सुन रही है। ठीक है जनाब, रोनी रोनी को वेलकम करते हैं, ये पहाड़पुर से हमें सुन रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर खलील सावान साहब, सलाम टू ऑल लिसनर्स, आपका प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है और केसन की क्या शान है माशाल्लाह, खुदा पाक मजीद तरक्की आता फरमाए। नियाज हुसैन शाह शबीर अहमद शबरा भाई को स्पेशल सलाम, और नजर हसन फ्रॉम कच्ची कारगढ़ जी, प्लीज इश्क दा बंदा जी, आप देख लें, आपके दिल की बात सुन ली मैंने।

असलामुअलैकुम जरा मोहम्मद हमजा खेमटा फ्रॉम मूसा वाली पीपला से। आपका प्रोग्राम बहुत खूबसूरत है, हम पूरी फैमिली बड़े शौक से सुनते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी फसल उठा ली है, अब कुछ दिन फारिग हैं और नई फसल की तैयारी का सोच रहे हैं। सब लिसनर्स को चाय वाला सलाम। अच्छा जी, आपने फसल उठा ली है, माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो। और ये दिन होते हैं बेसिकली फसल काटने वालों के और फिर आगे ईद की तैयारी और सारा कुछ है, इसलिए लोग बहुत बिजी भी थे पिछले दिनों के अंदर। अब फिर से फसल उठा ली है, साल भर की गंदम जमा कर ली होगी और यकीनी बात है कि अपनी फसल में से आपने गौरबा का हिस्सा भी जरूर निकाला होगा और ये बहुत जरूरी होता है, आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं। अच्छी जी, आलिया कह रही है कि हम रही सॉन्ग प्लीज भाई शो आप करें 91 पर। ये भी कह रहे हैं कि आप किसी और को शो ना दें। अच्छा, ये हम इसलिए कर रहे हैं के टांग के अंदर हम ये चाहते हैं कि हर बंदे तक हमारी आवाज पहुंचे, वो लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं और जिनको उर्दू नहीं आती। तो इसलिए 3 दिन जो है निसार को मैंने दिए हैं कि 3 दिन निसार शो करेंगे और 4 दिन जो है मैं शो करूंगा। तो जैसे मामलात हल होते हैं फिर आपको फर्दर भी बताएंगे। तो जनाब, कैसे नचो पाकिस्तान के प्रोडक्ट रब की अता है, हर दिल की सदा है और सबसे बढ़कर केसन के प्रोडक्ट जो है शिफा ही शिफा है। आप अपने मसाइल के लिए, चाहे आपको स्किन का मसला है, चाहे हेल्थ का कोई मसला है, एक दफा जरूर आजमाइए। और हमारी हर चीज की मनी बैक गारंटी है जनाब। आप हमारी नाइट क्रीम खरीदें, आप हमारी ग्लूटावाइट क्रीम खरीदें, आप हमारा ऑयल खरीदें, आप हमारा शैम्पू खरीदें, आप हमारा शिफा दर्द खरीदें, आप हमारा हाजमा कंट्रोल सिरप खरीदें, आप हमारी फक्की खरीदें, जो भी चीज हमारी खरीदें, आप हमारे फेस वाशेज, हमारे साबुन, कोई भी चीज, आपको 3 दिन का टाइम होता है आप लोगों के पास, ठीक है जनाब। 3 दिन तक वो चीज इस्तेमाल करें, अगर वो चीज आपको सूट नहीं करती है, वो रिजल्ट आपको नहीं देती, आप उसी दुकानदार को वापस कर सकते हैं जिससे आपने ली हो। और अगर वो बदमाशी करे, आपको पैसे ना दे, तो फिर आपने हमारा नंबर जो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है ना, उसी के ऊपर कॉल करें और डायरेक्ट हमसे मिलवाएं कि भाई देखो बदमाशी कर रहा है बंदा, पैसे नहीं ले रहा। लेकिन हमने हर दुकानदार को बताया हुआ है कि अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आता है जो कहता है कि भाई मैंने चीज खरीदी है और मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहे, तुरंत आप उसे पैसे वापस कर दें। तो ऐसा होता बहुत कम है, नहीं होता, ठीक है जनाब। हम इतने अरसे से मनी बैक गारंटी दे रहे हैं लेकिन आज तक नहीं होता ऐसा कि कोई आ जाए ऐसा, क्योंकि जनाब हर बंदे को जो है चीज रिजल्ट दे रही होती है, हर बंदा सेटिस्फाइड हो रहा होता है। और वजह क्या है कि ऑर्गेनिक और खालिस प्रोडक्ट हैं केसन नेचुरल पाकिस्तान के। जब आप यूज करते हैं, चाहे आप ब्यूटी क्रीम हमारी इस्तेमाल करें, फीमेल सुन रही हैं, तो हमारी 2 ब्यूटी क्रीम है, एक जाफरानी क्रीम है। और हम सजेस्ट करते हैं कि जिनकी उम्र ज्यादा है, जो शादीशुदा है और उनके चेहरे के ऊपर छाइयां हैं, तो वो हमारी जाफरानी फार्मूला क्रीम इस्तेमाल करें। जो कम एज की लड़कियां हैं, यानी कि 16 से 18 है, स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग है, वो स्किन को गोरा करना चाहते हैं, तो वो बहुत ही हमारा माइल्ड सी फॉर्मुलेशन है ग्लूटा वाइट क्रीम, जो कि डे एंड नाइट है, वो भी आपकी स्किन के ऊपर बहुत जबरदस्त किस्म का काम करती है और आपको गोरा बना देती है। दानिया हमें सुन रही है, सलाम भाई कैसे हैं आप, उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और भाई मैं तो इस टाइम डेली सोई होती हूँ, आपका शो नहीं सुन सकती, नींद आंख भी नहीं खुलती। भाई आपका हाजमा कंट्रोल सिरप तो बहुत ही बेस्ट है, मैंने 3 लिए हैं, मगर भाई वजन कम करने की तो आप पास फकी है, पर वजन बढ़ाने वाले भी फकी हमारी आ रही है, वजन बढ़ाने वाली भी वेट गेन के नाम से हमारी फकी आ रही है। बहुत जल्द आपको दानिया मिल जाएगी केसन शॉप से, ठीक है जनाब, खरीदिएगा। भाई जान, मैं जिम करता हूँ, क्या मैं ये फकी खा सकता हूँ और ये कहाँ से मिलेगी? रोनी फ्रॉम खानू खेल जी, बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। और ये आप रंगपुरडा के ऊपर जाएं, हैदर मेडिकल स्टोर है, न्याजी मेडिकल स्टोर, यहाँ से हासिल कर सकते। टाइम खत्म हो गया जनाब, और ये था हमारा आज का प्रोग्राम, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल आपसे फिर मुलाकात होगी 4 से 5, कल तक के लिए इजाजत।

0: बाद वो कहता है
1: उसका
0: सही था जो मुझे मारता था डांटता था और अगर उसके पास होता तो अब मैं एक अच्छा इंसान होता।
1: हाँ ना, यही तो फिर बाद में पछताते हैं ना,
0: बाद में पछताते हैं, फिर वक्त तो फिर चला जाता है ना।
1: बेशक बेशक बेशक।
0: तो माँ बाप से मुझे मेरी दरख्वास्त है कि जो बच्चे उस्ताद अगर उनके साथ जो भी रवैया रखते हैं कोशिश करें कि वो उस्ताद उस उस्ताद के पास तालीम हासिल करे और बेटे को कहे कि आपके फायदे के लिए तमाम उस्ताद आपके साथ करता है।
1: हाँ हाँ बिल्कुल। इसके अगर बाप है बेटे को मारता है या उसको डांटता है तो क्या बाप उसका दुश्मन है?
0: नहीं दुश्मन, उसके फायदे के लिए, लेकिन हाँ। वो तो उस वक्त वो कहता है कि मेरा दुश्मन है।
1: हाँ, वो उस बाप को समझता है कि मेरा दुश्मन
0: जब
1: है।
0: वो बाप खुद बनता है, शादी उसकी होती है तो उसके बाद वो कहता है, रोता है, कहता है कि ये जो बाप था अगर उसकी बात मैंने उस वक्त मानी होती तो मैं यहाँ इतने नीचे इस पर नहीं होता और इसके अलावा जो है मैं एक अच्छा इंसान बना हुआ।
1: बेशक बेशक बेशक बेशक बेशक।
0: बाकी आपका प्रोग्राम बड़ा अच्छा है और निजाम मोहम्मद से भी मेरे दोस्त ने कहा था कि आपका प्रोग्राम सुने, इंशाल्लाह वो सवारी में सुन रहा होगा और इंशाल्लाह आपको कॉल करेगा। बाकी तमाम आपके सुनने वाले जितने भी हैं, नेमतुल्लाह रही साहब है, मुलाजम दुकानदार है, हाजी सैफुल्ला है, सलीम कटी खेल है, तमाम को आबिद को भी मेरा सलाम।
1: वालेकुम अस्सलाम। यो जहान में खुश रहे आप। السلام عليكم
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام
2: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ملازم جی سناؤ
2: میرے ساتھ کی حالت ہے کو سلام تے تیری ایک ٹیم والا سلام مہمان والا کو تے عمر دے دے کو ایک کو جے تے صاحب جان دے ایک سلام
1: تو سا کو سلام تے پورے رنوال چھوٹے وڈا کو سلام
2: بڑے بڑے مہربانی وعلیکم السلام کی حال جی خیر
1: خیریت چنگے ودی وی ٹھیک ٹھاک خیریت زندگی ٹیٹ ہے ठीक ठाक प्रोग्राम सुना कि नहीं भी सुनो रह गए ठीक है जी मेहरबानी खुश रहे वजदर आवे आबाद रहे
2: रमजान कुराशी को सलाम ते नेमत ला रहे ते हाजी से फुलाए उमर दे कोल ते सलीम गट खेले ते उमर दे ते ते यो साथे जो छीने ते रमजान से ते नेमत साल सऊदी के खुरम सजा सजा ते मिठो लोग सलाम ते ते सलाम
1: खुश रहे आबाद रहे मेहरबानी जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मुलाजिम चाचा और सबको सलाम दे रहे थे और प्रोग्राम का मैं नहीं सुन सका हूँ क्योंकि बच्चे तंग करते हैं, बात बात दुकानदार है ना ये, और कभी बीच में नमाज के लिए चला गया तो टाइम ऐसे है कि। सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है जी।

0: उस सारे पास मौसम चंगे
1: यार, मौसम चंगे आज तो शुक्र है, झड़ी मरी घर जी बदिए।
0: हाँ हाँ,
1: नींद ऐसा ना आज
0: यार, ये तो मेरे को पता कौन ही हाजी साहब, पता नहीं कुछ झड़ी भरी खड़ी इमकान ही ना
1: जी जी, सारे पास घर जी बदिए आज।
0: अच्छा अच्छा, तू सो क्या दे, बारिश थी वजे
1: खैर
0: दी, बारिश मौसम खैर दी,
1: खैर दी
0: क्या कुछ सलाम दे सो
1: जी, सलाम है तो आप सलाम है तो जितने सुन रहे हैं सलाम है।
0: वालेकुम
1: सलाम,
0: खुश रहा है, आबाद रहा है, मस्त रहा है।
1: वालेकुम।

कुछ मैसेजेस में शामिल करूंगा। नजीर लैया से है, नजीर अहमद, चक नंबर 43, टी डी ए लैया। अस्सलामुअलैकुम, आप हमेशा सलामत रहें, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। नज़ीर भाई बहुत शुक्रिया, खुश रहें, आबाद रहें। और एक गुलियासीन नाज, तो इसने भी रेडियो लिसनर मुल्तान से गालिबन की तरफ से आपको इकबाल मेहदी, महबूब रौनक, चक नंबर 6, फैज मुल्तान, मलिक वसीम आवान का खलूस, प्यार और मोहब्बतों भरा सलाम। गुल यासीन साहब नाज, आपका भी, आपको भी हमारी तरफ से मोहब्बत और प्यार भरा सलाम हमारी तरफ से भी कबूल कीजिए।

ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम वगैरह है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 डांस की नशिया। हमारे साथ रहिए।

वो जो पत्थर में कीड़ों को पाल सकता है वही कोई रास्ता निकाल सकता है, वो जो कुन फयकून का मालिक है एक वही तो मुसीबतें डाल सकता है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 टांग की इस्लामी नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।

ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम वगैरह है। आप सुन रहे हैं रेडियो अमल 88.4 डांकी नशीला। हमारे साथ रहे।

0: La Salve, Radio Amman.
1: जिंदगी में सुकून सेह से जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास और शफा का भरोसा। इश्मा हर्बल ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा एक ऐसा ऑयल जो बेशुमार बीमारियों में मुफीद है, जैसा कि मैदे की तेजबियत, जलन, बदहजमी, बोक की कमी, कब्ज, दिल और गुर्दों की तकलीफ, जोड़ों और पट्टों के दर्द, सर दर्द, मुंह के चाले, ये सब तकलीफ अब खत्म, क्योंकि हल है सिर्फ और सिर्फ इश्मा हर्बल ऑयल। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा ये शिफा बहश ऑयल जिस्म के अंदर और बाहर दोनों के लिए मुफीद। इश्मा हर्बल ऑयल, कुदरत का मुकम्मल इलाज, हर दर्द का आसान हल।
2: यू आर लिस्टिंग रेडियो अमन 88.4 टांग। स्टे ट्यून्ड विद अस।

0: चाहतों के रंग अमन के संग अमन रेडियो 88.4 नेटवर्क
1: Back to back music with Radio Aman 88.4.

मैं हूँ असमा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बेहद

अस्सलामुअलैकुम भाई, मैं फातिमा बात कर रही हूँ करक से। मेरे शादी हैं 2 महीने में, मेरे बाल बहुत गिरते हैं, कुछ ऐसे बताए जो हफ्तों में रिजल्ट आ जाए। तरीका इशमा हर्बल यूज का सही था उधर की दोना पहले तकरीबन यो 10 मिनट और कवा डेली मालिश कवा यो बोतल जिकम तर डेली मालिश का दा टूल जड़ जड़ दा टूल वक्त पे मालिश का और दा इशमा या आमला शैम्पू या प्याज वाला शैम्पू दा लारावड़ा लस उरज वदा दा खपल वक्तो पतो लेगी न बपरी सही था मजबूती की बा इनशाला ग्रोथ बी खुशकी दरुणा दटोल बचकम गोर खत्म जी हाँ नुतो चिकम इशमा चिकम इशमा हर बल सर बस्ता सुबह खत्म मजबूती की अस्सलाम वालेकुम इनाम खान संग आई एम तलकीन आई लव इशमा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान जनाजे कड़ब में दरवानी द दुनिया गई गमुन टोल रासा रजीना।

अभी जाएंगे खूबसूरत ट्रैक की तरफ, क्योंकि बातें बहुत ज्यादा मैंने कर ली और मैं जब बातें शुरू करता हूँ तो फिर आपको पता है कि मैं मेरी माँ का मिजाज और मेरा एक जैसा है, वो भी जब बोलना शुरू कर देती है तो मेहमानों को मौका बिल्कुल नहीं देती, और मैं भी उसका बेटा हूँ तो वो ये आदत मुझ में अपनी माँ का है। ठीक है, तो जाएंगे एक जबरदस्त ट्रैक की तरफ, बेहतरीन सॉन्ग है। बुझा तो खुद में एक चिंगारी भी, बाकी नहीं रखी उसे तारा बनाने में, अंधेरा हो गया था मैं, बिता दी उम्र मैंने उसकी एक आवाज सुनने में, उसे जब बोलना आया तो बहरा हो गया था मैं, ना मेरा नाम था ना दाम बाजार मोहब्बत में, बस उसने भाव पूछा और महंगा हो गया था मैं। उन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जिसने जख्म खाए हैं, जिसके साथ वादा खिलाफी हुई है, जिसको किसी ने आसरे और उम्मीद देकर सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, मेरी लैला को देखा है किसी ने। कोई मुझे देखना है जिसने मेरा हाल पर न जाए, मेरा जोक शौक दे के मेरा इंतखाब दे के, मुझे देखना है जिसने मेरे हाल पर न जाए, मेरा जोक शौक दे के मेरा इंतखाब दे के। आपको मैंने बताया था ना, ये दिल जब टूट जाए तो फलक भी कांप उठते हैं, मोहब्बत रूठ जाए तो वबाएं फैल जाती है, तू देख लो जाना, तो देख लो जाना, तुम्हारे शहर में आज जंगलों का सकूत है, तुम्हें नाश्ता जिस पर वो मोहब्बत भी मशरूत है, तुम्हारा हुसन बस एक शराब है, और क्या दिलकश क्या बदसूरत, हर चेहरे पर निकाब है, हर शख्स बाहिजाब है। हाँ, तो जिन लोगों ने धोखे खाए हैं, जिन लोगों के साथ वादा खिलाफी हुई है, जिनको किसी ने आसरा देकर छोड़ा था, जिसने किसी शख्स का इंतजार किया था, जो बिछड़ गए थे बीच रास्ते में, जो एक मंजिल पर एक न हुए, जिन लोगों ने साथ रहने की कसमें खाई थी, जिन लोगों के दरमियान में खानदान वाले आ गए थे, उन सब के लिए एक जबरदस्त ट्रैक, ट्रैक तेरे बिन, ओएसटी तेरे बिन, खूबसूरत और बेहतरीन। एंजॉय करें, मजे ले इस दिल के कानों से सुने, आपको बहुत मजा आएगा, बेहतरीन ट्रैक है।

और ये कि ये बद्दुआ है तो बद्दुआ ही सही, अगर ये बद्दुआ है तो बद्दुआ ही सही, उस शख्स को मेरी मोहब्बत के सिवा किसी मोहब्बत में सुकून ना मिले।

और ए जिंदगी जा ढूंढ कोई बिछड़ गया है हमसे, ए जिंदगी जा ढूंढ कोई बिछड़ गया है हमसे। और सुन, अगर वो ना मिले तो तुम भी लौट कर मत आना।

बहती हुई आंखों की रवानी में मरे हैं, बहती हुई आंखों की रवानी में मरे हैं, मेरे ख्वाब ऐन जवानी में मरे हैं, बहती हुई आंखों की रवानी में मरे हैं, मेरे कुछ ख्वाब ऐन जवानी में मरे हैं, हमें कब्रों में नहीं किताबों में उतारो, हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं।

और फिर कहते हैं कि कभी कभी हमें किसी शख्स की वापसी नहीं चाहिए होती है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो एक बार ये मान ले कि उसने हमें वाकई तकलीफ दी थी। और कहते हैं कि उरूज मिलने पर इंसान खुदा न बन जाए, अरूज मिलने पर इंसान खुदा न बन जाए, इसलिए खुदा ने जवाल रखा है। और फिर फरमाते हैं कि किरदार के मुनाफिक लोग हमेशा लफ्जों के हाजी होते हैं। और आखिर में फरमाते हैं कि सीधे सादे मिजाज वाले शख्स के साथ किया गया धोखा आपकी तबाही के तमाम दरवाजे खोल देता है। कहते हैं कि यकीन करें, वो इश्क बड़ा कमाल का होता है जिसमें आप दोनों को पता होता है कि हम एक दूसरे के कभी नहीं हो सकते। इसलिए आला जर्फ ये है कि जब तुम्हारे पास किसी को बर्बाद करने की ताकत हो, आला जर्फ यह है कि जब तुम्हारे पास किसी को बर्बाद करने की ताकत हो लेकिन तुम वहां से खामोशी से चले जाने का इंतखाब करो, आला जर्फ यह है।

और बचपन की। बचपन की सबसे बड़ी गलती गलत फहमी यही थी बचपन की सबसे बड़ी गलत फहमी यही थी कि बड़े होकर जिंदगी मजेदार हो जाएगी, क्योंकि हम उस माशरे में रहते हैं जहां गंद उठाने वाले को गंदा समझा जाता है। और कुछ लोग वायरस की तरह होते हैं, जिंदगी में आ जाए तो सुकून की फाइल उड़ जाती है। और माफ कर देना दिल की सखावत है, माफ कर देना दिल की सखावत है, लेकिन किसी को दोबारा उसी मकाम पर रखना जहां उसने आपकी तौहीन की थी अपनी खुददारी से खयानत है। और ये अलग बात है कि मैं किनारे पर बैठा हूं, लेकिन मुझे पता है कौन कितने पानी में है। और मैंने सफर से पहले ही तुम्हारी किश्ती में सुराख देखे थे लेकिन मैंने तुम्हारे साथ सफर का फैसला किया ये सोचकर कि मोहब्बत मौजज़े करती है। और मैं मुंह पर बोलने का जिगर रखता हूँ लोग यूं ही नफरत नहीं करते मुझसे।

0: हजूस बताओ सुमा तो कॉल करो प्रोग्राम तो बराजी 0963865188 बांधे 0963865 ददी मतलब दारे चे जमुंग दा नवी कमरूना खुएं दी दी पा दे इंसो न पूई दी तब वे चे 0963 511 488 गुरु जी फर्स्ट कालर मुंग सर पलायन बांधी सोखते कमजे ना उस सब हुई। अस्सलाम वालेकुम।
1: अस्सलाम वालेकुम आसिफ साहब, क्या हाल है? चले तबीयत से चंगी
0: दी? बिल्कुल ठीक हो और मजीदी सुर दे खंदा गानी दी खाइसने खो गुरुर सो का दकम जेना
1: मिर्ज़मान चौकीदार रनवाल
0: रनवाल ना मिर्ज़मान चौकीदार संग चले दे वक्त पर ड्यूटी उलाड़ी
1: जी ड्यूटी दा
0: हां स्पे सिटी दा सरस्ता गनिष्ठा
1: जी
0: सिटी दा सरस्ता चौकीदार सारा सिक्योरिटी गार्ड सारा सिटी या सिटी लगा हुआ छ मुंग ता पता लगी तेजा
1: ना सिटी नस्ते दास नास्तु
0: हाय।